वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

पड़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: This is Sunrise, the UK's biggest.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: हवा को खुशबू मुबारक, फिजा को मकबूल मुबारक और आपको डेयरी वैली की तरफ से ईद मुबारक. सेलिब्रेट ईद विथ डेयरी वैली 100% नेचुरल पनीर घी योगर्ट एंड मिठाई. इज जर्नलिज्म डेड इन इंडिया? डजंट सीम सो.
3: चल क्या रहा है आपके सामने, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है?
2: Get ready to find some painful answers hidden in burning questions. Hathras 16 Days, a gruesome case of pain, power and politics from the journalists on field. Streaming on Hindi Z5. My mom started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ki for 3 generations. Khanam ki, the legacy lives on.
4: Khanam ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores. Wishing everyone Eid Mubarak. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com. This is Sunrise, the UK's biggest.
5: प्यार टम टम बाजे शहनाई.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू ऑन द 5th of June।
1: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, गोल बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: Can I use my phone a friend, a cool Raj?
1: जी बिल्कुल।
2: Hi Raj, listen, is it bronze bank, silver bank, gold bank or platinum bank?
3: It's definitely gold bank.
2: I'd like to go with Raj's answer, please. Gold bank.
1: बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
4: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओ 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
2: माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s। दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations। खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन।
4: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP International, available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores. Wishing everyone Eid Mubarak.
5: Kavita on Sunrise with Sony Max. Attention cricket fans, swap the IPL for a real classic this weekend. For the first time on Sony Max, watch the blockbuster Lagaan starring Aamir Khan this Sunday 3 p.m. on Sony Max.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: माय मॉम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी बटर चिकन दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी द लेगेसी लिव्स ऑन.
3: खानम घी अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स. विशिंग एवरीवन ईद मुबारक.
4: कविता ऑन सनराइज विद सोनी मैक्स. Attention cricket fans, swap the IPL for a real classic this weekend. For the first time on Sony Max, watch the blockbuster Lagaan starring Aamir Khan this Sunday 3 PM on Sony Max. Sunrise Radio.
2: The thought of the day with Citybound Travel. With over 50 years of turning dream holidays into reality. From flights and holiday packages to honeymoons, cruises and escorted group tours, enjoy special deals to India, Dubai, Japan, Vietnam, Cambodia and more. Call Citybound Travel on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk.
5: Buddha Bhatt said, "It's important to change knowledge and accept our mistakes. It's important that we, this goes even for me, introspect and see the wrongs we have done. It's time we all grew up."
3: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: My mom started cooking with khanam ghi in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghi for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
1: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghi.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
3: सब सुनने वालों को हाजी बाबा हलाल मीट्स की तरफ से ईद अल अदा मुबारक. विजिट अस एट hbhonline.co.uk और एट योर नियरेस्ट ASDA.
4: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए.
5: तो वसीम ज्वेलर्स आए.
4: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए.
5: तो वसीम ज्वेलर्स आए.
4: और हमारे सोने की वैल्यूएशन.
5: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल. सबसे सोना सदा सोना.
5: वसीम ज्वेलर्स.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काज। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5.
3: माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन।
4: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स। विशिंग एवरीवन ईद मुबारक।
5: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Fancy trying something new and sweet? Pepe's is launching for a limited time a new range of desserts. Try them and get 50% off. Vote for your favorite to win a special Pepe's prize. Sunrise
2: Radio. The thought of the day with Citybon Travel, with over 50 years of turning dream holidays into reality. From flights and holiday packages to honeymoons, cruises and escorted group tours, enjoy special deals to India, Dubai, Japan, Vietnam, Cambodia and more. Call Citybon Travel on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk.
6: Buddha Bhatt said, "It's important to change knowledge and accept our mistakes. It's important that we, this goes even for me, introspect and see the wrongs we have done. It's time we all grew up."
4: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काज। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5. माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन।
3: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स। विशिंग एवरीवन ईद मुबारक। Drive on sunrise with Pepe's Piri Piri. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in-store or relaxing at home. Sunrise
4: Radio. Happy birthday to English singer and TV personality Mel B, aka Scary Spice. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate with delicious mithai from Ambala Sweets.
5: Birthday greetings from Ambala Sweets, serving the community for 60 years. Order online right now and get 10% off your order with code SUNRISE10. Stock up on fresh laddu, barfi, gulab jamun and ras malai, plus beautifully presented mithai gift tins. Order now, save now. Limited time offer and enjoy the taste you love with Sunrise 10 at ambala.co.uk.
3: This is Sunrise, the UK's biggest Asian mix.

0: म्यूजिक फ्रॉम द फिल्म सुल्तान, बेबी को बेस पसंद है. अनुष्का शर्मा, शी वाज दिस वीक्स आर्टिस्ट ऑफ द वीक.
1: The Artist of the Week with Sony Max. Swap the IPL for a real classic this weekend. For the first time, watch blockbuster

0: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर।
1: Friday nights on Sunrise brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
0: Is Shah Rukh Khan doing another set of 3 films this year? Has Vicky Kaushal decided to ace the biopic game? Are you still sipping Karan Johar's brew of the most controversial coffee in town? Or perhaps losing sleep over when Priyanka Chopra Jonas will finally do her next Masala Bollywood film? Views, reviews, interviews, competitions aur showbiz ki sabse exciting baatein, saath mein aapke favorite gaane bhi, mere yani ki Shabnam Sahi ke saath. Bhooliyega mat, Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV, weekdays from 9 AM.

0: coconut water, natural, clean and truly refreshing. Available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: Save up to 50% in the Dunelm sale.
2: Go on, get some savings in your life with brilliant offers on thousands of products, from bedding and bathroom to curtains, furniture and so much more.
1: Sale.
2: And breathe. Save up to 50% in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
0: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर।
3: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
4: This is Sunrise, the UK's biggest. Asia.

0: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs apply।

0: Quality foods.
1: My mom started cooking with khanam ghi in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghi for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
2: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghi.
1: Khanam ghi, the legacy lives on.
3: Khanam ghi, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
4: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
5: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
4: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
5: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
4: और हमारे सोने की वैल्यूएशन?
5: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
1: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना, सदा सोना।
5: वसीम ज्वेलर्स।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: फ्राइडे नाइट्स ऑन सनराइज ब्रॉट टू यू बाय जी टीवीज तुम से तुम तक डेली एट 8:30 PM ऑन स्काई 707 वर्जिन 809 एंड Z5.
3: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: इंडियावाला पनीर की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक. सॉफ्ट व्हाइट पनीर, द टेस्ट ऑफ होम. विजिट indiawala.co.uk.
1: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.